मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: गरेको भए होइन, गरिहाल्नुहोस्। यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
1: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनेन्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
0: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
1: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
0: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
1: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
2: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाट जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली, फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-42-73-59।

0: लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौ।
1: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
2: ओसीएमसी भनेको लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
1: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
2: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैङ्गिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
3: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
4: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर, कैलाली।
1: आइ हो बड्डो, घर कहिया सिज्जैब? पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जार सेक्ल?
5: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिल्बो मिल्बो निकरत का कैन हो का
1: मिस्तरान बर्जनाउकन घर हेरो न, पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्टफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न, कबु कहुर घुम जाए त था पाए।
6: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: के तपाईलाई थाहा छ,
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा के उष्ट बाटी गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरती रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत।

0: कहाँ टीकापुर में रलक रगैया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबूलर का कापी हरी थी ना कबू पेंसिल हरी थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस कटरस बाटीन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रगैया झोला उद्योग में रगैया झोला उद्योग हमार यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक सौ सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव आज 6 प्रदेश भर समेत वर्षा के संभावना। लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में हावाफुरी चलना। कर्णाली लडिया के किनार में सामुदायिक बनुआ लडिया कटान के चपेटा में वर्षेनी 100 हेक्टर बनुआ क्षेत्र कटान हुई थी। जानकी गांवपालिका से विपद व्यवस्थापन में असल अभ्यास करती समुदाय के सक्रियता बढ़ती हो। टीकापुर अस्पताल के फिजियोथेरापिस्ट अनिल तिवारी से प्रयोगशाला के प्रमुख उमेश बजगाई पर मारपीट। आप पूरा खबर। हाल देशभर मानसूनी वायु के प्रभाव रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा। मानसून के न्यून चापीय रेखा नेपाल के पूर्वी और पश्चिमी भूभाग में नई सरदर स्थान के आसपास अवस्थित बा, जेकर प्रभाव से हाल देशभर साधारणतया मौसम बदलती बा। बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान तथा बाकी प्रदेश के कम स्थान में मध्यम खाल के समेत वर्षा होती रहल बा। असी के दोपहर के देशभर साधारणतया मौसम बदलन बाकल से देश के पहाड़ी और हिमाली भूभाग में कुछ स्थान में चट्यांग सहित मध्यम खाल के वर्षा के संभावना बा। बागमती गंडकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ स्थान तथा मध्य प्रदेश के साथ ही कोसी प्रदेश के तराई भूभाग में कम स्थान में चट्यांग सहित के मध्यम सम के वर्षा के संभावना बा। बागमती गंडकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में एक दो स्थान में भारी वर्षा के फिर संभावना रहल बा। लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ स्थान में हावाहुरी की संभावना बा। आज रात के देशभर के अधिकांश मौसम बदलन बाकल से कोसी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमाली भूभाग के कुछ स्थान तथा लुम्बिनी प्रदेश के और सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली भूभाग में कम स्थान में चट्यांग सहित मध्यम खाल के वर्षा के संभावना बा। मध्य प्रदेश के साथ ही कोसी बागमती गंडकी लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी और समेत तराई भूभाग के कुछ स्थान में कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में कम स्थान में फिर समेत चट्यांग सहित के मध्यम खाल के पानी पर्न संभावना देखाई दी बा। कोसी बागमती गंडकी लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी और तराई भूभाग में एक दो स्थान में भारी पानी पर्न संभावना बा। कोसी और गंडकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में एक दो स्थान में ढेर पानी पर्न संभावना रहल बा। टीकापुर अस्पताल के प्रयोगशाला के इंचार्ज उमेश बजगाई पर मारपीट हुई बा। मंगलवार के दोपहर के अस्पताल के आंतरिक व्यवस्थापन के विषय में हुई छलफल में विवाद बढ़ता से प्रयोगशाला प्रमुख बजगाई समेत अस्पताल के फिजियोथेरापिस्ट अनिल तिवारी से मारपीट करल के हो। अस्पताल प्रशासन के अनुसार प्रशासन कार्यकक्ष में हाथ छोराछोर स्थिति हुई पाछे तिवारी है बाहर पठागिल रहकल से कुछ बेर में बजगाई बाहर निकलक पाछे तिवारी आक्रमण करल के हो। बजगाई के समेत पिटो पाके बजगाई है समेत मारपीट करुया तिवारी विरुद्ध के कार्यवाही केलक। अस्पताल प्रशासन ही निवेदन देहल पाछे प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज सहित इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर में पठाइल बा। फुटेज में बजगाई बाहर निकलती रहल देख पड़ल पाछे तिवारी कुट्टी जाके दौड़ती जाके पिटलक ओ बजगाई प्रतिकार करना खोजलक और कर्मचारी आके समेत रोकल दृश्य देख पड़ल बा। इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर के प्रमुख प्रहरी नायक उपाधीक्षक प्रकाश दांगी अब तिवारी हे समेत प्रहरी कार्यकक्ष में धरके दोनों पक्ष हो अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष संगे बुझना काम होती रहो। दोनों पक्ष मिलने से घर जाइना और नहीं मिलने से कानून अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ना बतवा गिल बा। तिवारी प्रयोगशाला के कर्मचारी हे समेत विदा के दिन वो ओवर टाइम के नाव में ढेर सुविधा लेहल आरोप लगा गिल बा। कल से प्रयोगशाला प्रमुख अपना एक समेत विभाग के कर्मचारी र लकोरसे सफ्टवेयरमा रेकर्ड रहल अनुसार नै प्रशासन से देलक सुविधा पैलक बटोइटियाल बाटै मारपीटमा समेत पर्न के समेत प्रयोगशाला प्रमुख उमेश बजगाई फे अपना हे पटक पटक दुर्व्यवहार हुइति रहलको न्यायकी प्रतीक्षामा रहल बटोइले बाटै खोजखबरमा एक घड़ी विश्राम पाछे फेर से भी सुन्ते रहबी सामुदायिक रेडियो टिकाप्रे एफएम
1: चुरे जोगाउ पानी का मुहान बचाउ वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौ हरियाली बढ़ाउ चुरे को संरक्षण हाम्रो दायित्व हो समृद्ध र सुरक्षित भविष्य को आधार हो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लंकी कैलाली द्वारा जनहित में जारी संदेश भागीरथी मेडिकल टीकापुर में विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना डाक्टर बमबहादुर को क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुर में साउन 9 गते दोस्रो शनिवार का दिन नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत धेरै अनुभवी र सीनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौका को फायदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिज आएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु मुटुको धड्कन कम वा ज्यादा हुनु लामो समयदेखि टाउको दुख्नु छटपटी लाग्नु जिउ झमझम हुनु जलन हुनु चिन्ता मान्नु जीवनसित निराश हुनु आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु धेरै शंका मान्नु कानमा बोले जस्तो लाग्नु कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु काममा मन नलाग्नु झर्को मान्नु रिसाउनु बिना कारण हाँस्नु मुस्कुराउनु रुनु घर छोडेर भाग्नु यौन इच्छाको कमी हुनु जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लि सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिउ हाम्रो यहाँ इसीजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-777 समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते दोस्रो
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा कर्णाली लदिया किनारमा रलक सामुदायिक बनुवा लदियाकै कटानमा जोखिममा पर्ति बाटै वर्षेनी लदिया किनारमा सामुदायिक बनुवा कटान हुइटियाल बा लदिया कटान नै बनुवा संरक्षण केला भारी चुनौती रलक सामुदायिक बनुवा हुक्रा बटोइटी बाटै कैलालीकै कर्णाली समेत लदिया किनारमा सामुदायिक बनुवा कटानके चपेटामा पर्तिरलक हो लदिया किनारमा सामुदायिक बनुवा कर्णाली लदिया महिना बार से वर्षेनी कटान करती जाइबेर यहाँके सामुदायिक बनुवा लदिया कटानके चपेटामा परलके हुए वर्षेनी हुइतिरलक लदिया कटान सामुदायिक बनुवा बचैना सामुदायिक बनुवा उपभोक्ता हे समेत भारी चुनौती हुइतिरहल्बा टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 763 स्थित शक्ति कर्णाली सामुदायिक बनुवाके अध्यक्ष जितराम चौधरी के कहाइबा शक्ति कर्णाली सामुदायिक बनुवा जस्तै टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित खोटेना भुराखानी सामुदायिक बनुवा फे लदिया कटानके चपेटामा पर्तिबा खोटेना भुराखानी सामुदायिक बनुवा से फे करिब 25 हेक्टर क्षेत्रफलमा लदिया कटान करती रहलबा कर्णाली के समेत एक थो भाग नै सामुदायिक बनुवा ओर फर्कलक ओर से इस क्षेत्रमा बार्स के समेत कटान हुइति रहलबा खोटेना भुराखानी सामुदायिक बनुवा उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष भूपेन्द्र सावंत की कहाइबा जगतपुर सामुदायिक बनुआ हेफे कर्णाली लदिया के कटान से बचैना भारी चुनौती रहल बटागिलबा जानकी गांवपालिका वार्ड नम्बर 6 स्थित जगतपुर सामुदायिक बनुआ कर्णाली लदिया के एक थो भंगालो नै दुई भागमा समेत विभाजन करके प्रत्येक वर्ष हेक्टर जमीन समेत बनुआ क्षेत्रमा लदिया से कटान करते आइलबा लदिया कटान रोक्ना नैसेकलक खण्डमा सामुदायिक बनुआ के आधा हिस्सा नै ओरैना करलक उपभोक्ता हुक्रा चिन्तित रहल बाटै असिके लदिया से कटान करती रलक बनुआ है बचैना सामुदायिक बनुआ से स्रोत नैसेकना समेत रलक ओर से सरकार से लदिया कटान रोक्ना टर्बन लगायत के काम करती रलक से मजा होइना जगतपुर सामुदायिक वनवाकी अध्यक्ष नीर शाह के कहाईबा कैलाली की ठिकापुर और लम्की नगरपालिका तथा जानकी गांवपालिका के क्षेत्र में कर्णल लड्डिया किनार दर्जनों सामुदायिक वनवा हुआ यी वनवा बारे समेत वर्षनी यी सामुदायिक वनों में अधिकांश सामुदायिक वनवा में कर्णल लड्डिया कटान से चपेटा में परल बताइल बा। कैलाली की जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 3, 4, 6, 7 और 9 में बाढ़ से विपद जोखिम में समेत प्रतिभा जानकी गांवपालिका में समेत कर्णाली और पथरिया लद्या से बाढ़ जन्य विपद निम्ते नकरल बा। बर्खा में ये लद्या भरी भराव अनियंत्रित हुईलक ओर से बाढ़ से हरेक वर्ष वर्षनी परिवार प्रभावित हुई नकरल बा। बाढ़ जन्य विपद की जोखिम कम करना पालिका से समुदाय की क्षमता अभिवृद्धि में जोर दिल बा। कर्णाली पथरिया लद्या के कारण यहां के हरेक बर्खा में डुबान के समस्या होती बा। वार्ड नंबर 6 स्थित सामुदायिक पुस्तक विपद व्यवस्थापन समिति में लम्की भुरुआ के अध्यक्ष तथा बरघर जोग बहादुर चौधरी विपद व्यवस्थापन के बारे में अपना हुक्र सक्षम होते गैल पूर्व तैयारी के बारे में समेत सिकल समुदाय में सूचना प्रवाह में ढेर प्राथमिकता देना करल बतवा गिल बा। प्राथमिकता उपचार कार्यदल के संयोजक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दीपक देवी नेवानी फिर सामुदायिक बनवा तमाम मेरके तालिम देहलो समुदाय में ऐना मौसम अनुसार के फिर विपद के सामना करना समुदाय के क्षमता बढ़ना करते अलग बटवा गिल बा। वहां समुदाय में कर्णाली लदिया से पानी के अवस्था के बारे में समुदाय में कैसी के समेत जानकारी देना खोज तथा उद्धार के लग आवश्यक सामग्री समेत रलक समेत न और से सहायक बनती गैल बटोले बाटे। विपद व्यवस्थापन समिति के उपाध्यक्ष जगत कुंवर रानी कुलवा के कटान से बाढ़ के जोखिम

0: सरकार के प्रवक्ता सस्वेद पोखरेल के अनुसार वो निर्णय से अस्पताल हे समेत शिक्षण स्वास्थ्य सेवा समेत चिकित्सक जनशक्ति उत्पादन केलक आवश्यक संरचना सहित संचालन कर डग राखल बा। किसान बहुउद्देश्य सहकारी संस्था अपन शेयर सदस्य के श्रीमान मृत्युहिल पाछे कर्जा मिन्हा और काजक्रिया खर्च उपलब्ध करायल बा। जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर चार कंचनपुर के शेयर सदस्य खगीसरा तारामी के श्रीमान के समेत रामबहादुर दरलामी मगर के मृत्यु पाछे खगीसरा से 2,30,500 रूपया कर्जा मिन्हा और 8,000 क्रिया खर्च समेत उपलब्ध करायल बा। रकम के चेक जानकी गांवपालिका के वार्डाध्यक्ष चार नंबर वार्डाध्यक्ष दीपेन्द्र कुमार कठरिया के उपस्थिति में शेर सदस्य खगीसरा तारामी हे उपलब्ध करागिल सदस्य सुरक्षा कोष में उक्त रकम उपलब्ध करागिल सहकारी के समेत टीकापुर शाखा के प्रमुख चंद्रकांत रेग्मी बटोले बाटे। खोजखबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फेर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि, संपर्क नंबर 9849585808।
3: बाबू ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
6: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846777417।
0: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। सुरपश्चिम प्रदेश सरकार से आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 में सवारी साधन व्यवस्थापन के लग भारी रकम छुट्टेल बा। प्रदेश के समेत सरकार से सवारी साधन खरीद, ईंधन, बर्बट तथा भाड़ा मकेल कुल 57,69,00,000 रूपया से ध्यार खर्च करना योजना सार्वजनिक करल बा। आर्थिक मामला मंत्री विक्रम सिंह धामी से असार 1 गते प्रदेश सभा में प्रस्तुत करलक बजेट ऊपर में मंत्रालय तथा माठत के कार्यालय में फे 2 पांग्रे और 4 पांग्रे सवारी साधन खरीद करना 34,77,63,000 रूपया विनियोजन करल बा। सवारी साधन में भाड़ा के लाख 1,55,57,000 रूपया छुट्टिया सकल बा। बजेट में ईंधन खर्च के लाख 13,03,36,000 रूपया विनियोजन करगिल बा। जेकर मध्य पदाधिकारी हुकरन के लाख 1,51,38,000 रूपया, उसको कार्यालय प्रायोजन के लाख 10,32,83,000 रूपया तथा और प्रायोजन के लाख 1,19,15,000 रूपया छुट्टिया गिल बा। करके शहरी साधन मरम्मत के लाख 8,32,83,000 रूपया विनियोजन करल बा। उसको करके गाड़ी खरीद, ईंधन, मरम्मत भाड़ा शीर्षक मकेल प्रदेश सरकार से 57,09,00,000 69 लाख

रूपया खर्च करना जनायल बा। एमाले के प्रमुख सचेतक एन बहादुर महर्षे बझांग में चट्टांग के कारण पशुधन में भारी क्षति पुगायल बटोल बुधवार के प्रतिनिधि सभा में बैठक में बोल्टी महर्षे बझांग जिला के सुरमा गांव पालिक दुई में असार 22 गते रात के पर्लक चट्टांग के कारण समेत रणबहादुर बोहराओ लाल चंद बोहरा के करीब 100 थो भेरी मरल और ठप 50 थो घायल रहल बटागिलवा किसान उकरण तत्काल राहत क्षतिपूर्ति के व्यवस्था करना सरकार संगे मांग कर ले बाटें। ओ सरकार से गोविंद बहादुर कार्की हे मुख्य सचिव नियुक्त करलबा। बुधवार के बैठक मंत्रिपरिषद के बैठक से कार्की हे मुख्य सचिव नियुक्त करने निर्णय करल। सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल जानकारी दिल बाटे। कार्की यागे प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की कार्यालय सचिव रहे। वहां प्रधानमंत्री कार्यालय के सुशासन महाशाखा हेती रहे। सचिव में बढ़ुआ हुईलक दुई वर्ष में नई वहां मुख्य सचिव बनना सफल हुई के हुए। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव आज छठ प्रदेश में भारी पानी पड़ने संभावना। लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के

0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन त भाउ, के पाउँछ त्यहाँ?
1: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
2: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
3: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
4: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतोल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला टेरस।
5: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला टेरस,
6: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
4: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484463 र 98164602004।
7: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
8: कोट पीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
7: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। सब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। ओसीएमसी, स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
8: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
7: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।

0: तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई।
1: उफ बल्ल घरक भिटा निखौराइदा
2: मुस्कान रिथाई घरक भिटा आमी निके निउराइ छ कि का खेतमा सखारन कला मिनी लै जाई पर्ना रह
1: आब्बा मराइदा दान्ती बादा
2: ले ले वही मिनी बना कर भेजी है तू लै जा दियस ना।
1: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो यहाँ भिटा मत ढिला को बा माथी ने सब दिए पर का हाँ सब दियो अय्या दाई सब का डरल
2: दाई खै खै कहाँ बात है
1: यहाँ दाई ये दाई ना जम का डरल
2: अरे लियो हाली क्यों बाटो मचे मुस्कान मटे सब का डरलस लियो हाली
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपुआ करलस कर
3: ना त्याओ काकी तो मुस्कान न्या त्या का शांत होकर बैठो ना बेन काकी मुस्कान न श्वास का न सुटाई हलचल निकल रखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई श्वास का सुटो ता
3: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा घर गहना निकल जैना मेकअप फाफसर बना दी ओ हाथक चुड़िया की निकाल दी वाकत कटला छाट भर नहीं चलाखना
2: बैठा भैया सबो कटला ठोक आंदर पांदर चीर का इंजेक्शन ने तान का अथवा मुंह ले सूस का बीस पोर निकलना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सबो कटला घाव आंदर पांदर कटना डगना सूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
2: उसी नो कल से धर मेरा लान खा वही निटार खा वाकर सबो कटला ठाम और लगा दियो टना नानू
3: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनु नानू बुझनु
3: बिना काकी रामेश्वरा मोटरसाइकिल लेखा आई कही झट्टा से झट्टा साधन खोज कर एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाई सेक जाई कल से मुस्कान होना झट्टा चुमर बनाई सेक जाई दादा आई का अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम दाता हम कहकर हेरा पड़ा हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुला हमार गांव से तो मिर्सहेत स्वास्थ्य संस्था में को सर्पदन से उपचार कही जिना रही था हो वहाँ ले जाए पड़ा मुस्कान होना
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर राकेश नानू आ गई ला
3: लेव लेव लेव काकी मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बिच्चा में वही खड़ा रही का झट्टा से झट्टा सर्पदन उपचार केंद्र में पुगाई सेक जाए कला से मुस्कान हना बताई सेक जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपुआ डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदन से उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहा कौन सवारी साधन उपलब्ध निहिलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मोटरसाइकिल सापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझन साफ फिर काट से ठा संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखा इसे बस से हुकर सपो विषाहर अलग निरलग पहचान के खा सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सपो डसलक मने यहाँ न बताई से दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर से दिखा सपा दशलक मने यहाँ ना झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डाली इहिले ऊ मने एक जिनकी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी क्लाक वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई था पत्ता लगाई क्लाक आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए से दिखा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज।

0: फुका पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा के ओष्ट पाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से लड़का सामान निहरा
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417

0: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक।
1: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू: ओपीडी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, एक्सरे सेवा, ल्याब अर्थात प्रयोगशाला सेवा, ईसीजी सेवा, मेडिकल सेवा, ईएनटी सेवा, प्लास्टर सेवा। बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। डाक्टर हेमन्त स्वार, टिकापुर, ब्लक नम्बर 7, गोल पार्क नजिक, गुम्बा रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 091-560-095, मोबाइल नम्बर 98-484-27-359।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका अनसे के कतरा सुगर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41 208 और 98486 39 261

0: फुका पिएर कभी पेन्सिले रहेठ कबु झोलै फटाका आजी कहा कना हो कहा कना हो बाबा फिर वस्तो बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिखने का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मर अलग रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

जेगुर बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपने के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीका प्रेषण 101 मेगाहर्ट्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम मझेरी के सलाह के बैठक सको रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रह पर स्वागत के संगे अभिवादन करे हाटो मैमिशन अमिका बेटिक में बेट के साथ देख रही भाई आकाश चौधरी और मई बाटो अपनी संग्रह मैमिशन संघारी कसिन बहाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई भी मैं एकदम आराम बाटो अपने एकदम आराम हुई भी कना भरपूर आश में बटो जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपटल में यात्रा में जहां रहे से कार्यक्रम में सहभागी जन भी कना मैं अपलोकन अर्जी अनुरोध और निवेदन करना चाहता हूं विशेष करके अपने होकन तो आज के दिन विशेष करके सुहाना सुहाना बा मौसम सुहाना बा पल घड़ी रमाइलो बा संगारू के बद्री असक बा मने सिमसिम सिमसिम कहूं कहूं पानी आई ठुई कल से कहूं नया आई ठो तर बद्री चाहिए बद्री असक बा तर घाम चाहिए घामे बा हो एक बार कसिन बा कठक पानी पड़ता अपने के ठाव में कसिन के पानी पड़ता सोचल असक पानी आई टा नया आई ठो जोन हमारे किसान दाजू भाई हूं कन के जोन खेतवा में चाहना मेरा पानी चाहिए आई टा कि नहीं अस्त अस्त गप करे लग संग संग मजा मजा अपने के टैलेंट अपने के प्रतिभा सुने के लग कार्यक्रम में सुनाएक लग आई भी गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर चिरे चिरोगन की आवाज जानवर की आवाज नेतन के नक्कल केकरो कैरिकेचर कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा यदि अपने धन बाकर से कार्यक्रम में सहभागी जन भी कार्यक्रम में आई भी का नाम है अर्जी अनुरोध और निवेदन कर दो तो फटाफट से डाल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जन थे कर भी कार्यक्रम की शुरुआत में श्री गणेश कर एक रमाइलो गीत से गीत के पास समय नहीं बात डाल करते कर भी सुनने का नाम 5 61 256 सुनना लाइन खुलेगा।

हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रममा जोली आफ्नो गणकलाकमै जलपरी बनके पानी में नाचम एकदमै रमाइलो गीत कोइटेल फोन लाइन में हालबाट बोल गर्न चाहम केउले कहाँ से हजुर राम राम वहाँ सम्पर्क में नै हुई शायद लागत नहीं डायल करती रवि 091-5561-255 अथवा 091-561-255 लाइन एकदमै खुल्ला भा कार्यक्रम में सहभागी जन निकाल से अपने को हमारा रमाइलो गप हो लगाएंगे कौजा करती बाटी अपने के दिन कसी के बीतता कसी के अपने के समय चलती बा कसी के अपने के मतलब दिनचर्या बीतत अपने के का करके दिन बीते थी कसी के अपने के जीवन चलती बा हमारे संगे स्थिर करे आई ना ये मझेरी कनाई सिनंग ना हो जहां अपने को और हमार रमाइलो गप करना ठाउँ तो अपने चाहिँ अपने को हमार गप संगे संगे हमारे मजा मजा चाहिँ गीत सुन्थी कहीं पर तो अपने चाहिँ हमार कार्यक्रम में सहभागी जन भी 091-5561-255 अर्थात 091-561-255 लाइन एकदम खुला वा कार्यक्रम में सहभागी जन विकल से अपने को हमार रमाइलो गप हुई और सुहाना मौसम बा पलघरी रमाइलो बा अब की बेला में सबको जन के लगभग लगभग खेतवा सेक डाल हुई दी लागत और हरदवाई खैना बेला हुई बाई बहुत ठाउँ मा त सायद हरदवाई कहुँ कहुँ खासै कहिले भी कहुँ खैन तयारी में हुई लागत समय मिलाके समय कब कब मिलेबो सबको जहंगे पाए पर्ना बेला हुई पर समय छुट्टी के दिन मिलेबो वैसे कि शायद लागत में अपने हरदवाई अभी नई खेले हुई तो खैन तयारी में हुई लागत हरदवाई का ना ऐसी एक चाड़ हसक मनाबो गांव भरिक मन खेतवा से के जब काम करके थकल बेला में एक चाड़ पर्व के हिसाब से गांव भरिक सूरा मार के भेरी छगरी मतलब अपने के हुकन जैसिन बनता ऊ तरीका से हमरे मतलब जीता मार के हमरे हरदवाई मनाइना चलाओ बा और अपन नाथ पाठ इष्ट मित्र संग्रह हुकन चाहिँ बोला के खैना और खवैना रमाइलो करना दुखैसो भुलाइना मेरा चलन रह थारू समुदाय में तो बहुत ठाव में बा बहुत ठाव में चाह नहीं हो बहुत बहुत ठाव में जस्ता संग संग मनाई थे जैसा टीकापुर के आसपास में अब फेन टीकापुर नगरपालिका भीतर जानकी गांव पालिका भीतर सबको गांव मत नहीं हो तर कोई कोई गांव मत जरूर बात जैसे टीकापुर के सवाल में कर ले से टीकापुर के बनगांव लागत में एक दिन हरदवाई खाई थी सबको पूर्वक जैसे तीन ठो पूर्व वहां तीन ठो पूर्वक जमा जाने एक दिन चाहिए हरदवाई मनाई थी ऊ बेला में कहा हुई कि ऊ गांव में चाहे एकदम चाढ़ हसक लगना का यानी कि त्यौहार आयल हसक लगना महसूस हुई क्या वैसे कि टीकापुर के जैसा और ठाउँ यहाँ मतलब और ठाउँ फैन बा टीकापुर समितिपुर और फैन अपने एक ही दिन खैना हरदवाई मनाइना चलन बा वैसे कि टीकापुर के और ठाउँ फैन हुई सबको तो जानकारी नहीं होता था मैंने लगभग लगभग जानकारी रहल ठाउँ में असिने सिन हुई वैसे कि बर्दिया और हुई सेकट लागत महीन वस्ते का अपने के वहां पश्चिम और हुई सेकट कंचनपुर हुई और हुई सेकी सेकट हुई वैसे के बांके और दांग और हुई सेकट हुई लागत महीन तो दांग और तो अभी खेतो एकचोटी हमारे यहां से ढिले कर थैंक यू पर लगे थे कहती कार्यक्रम में सहभागी जन टेक भी कार्यक्रम आई टेकर भी अठे ठाकुर गीत जोड़ा अपने गलत रमायल कर ठाकुर गीत गीत के बाद समय ने बात डायल करते कर भी 091-5561-255 लाइन खुलेगा।

हजुर, लागिरे लागिरे लागिरे माया मोह लागिरे बिल्कुलै रमाइलो गीत कार्यक्रममा जोली आफ्नो कानकेला कार्यक्रममा भर्खर रेडियो खरल विकल्स इहो रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज वसँगै हाम्रो वेबसाइट www.tikapur.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्र मार्फत आफ्नो हामी सुने सेक्ठी जे जहाँ से हुई वे ठाउँ से हम कल कर सकिए सुहाना सुहाना समय सुहाना सुहाना पल घड़ी सुहाना सुहाना रमाइलो पल में अपने कर हमारे रमाइलो गफी का नाम अपने कहना चाहत हूं तो अपने के फटाफट चाहिए डायल कर भी 0951 अथवा 0915612555 लाइन एकदम हमें खुला गेले बटी संगारे बुरे लगभग लगभग हमें असार महीना के फेन लगभग लगभग अन्तिम हप्ता के आगे हप्ता के लास्ट दिन के पर यानी कि हाम्रो अब एक पाछे एक हप्ता अभिन कुल बाई के पर 32 के महिना हो यी महिना र अभिन लगभग 7 दिन पुरै बाँकी बाँकी पर आज लगा के 8 दिन हो तर अभिन 7 दिन किल बाँकी बाँकी पर यी असार महिना तो असार महिना 32 के हो तर मारे से अब एक हप्ता

रिमझिम रिमझिम पानी बरसे मनुआ मोरे लागे तरसे रे। अब रिमझिम रिमझिम पानी बरसे परल बिल्कुले पानी नै बरस के तो धान खेतवा मैं एकचोटी समस्या भा तो मारे पानी चाहिए सोचल सक पर्दे पड़ल रिमझिम रिमझिम मैले सबै लम्बा समय सम पर्दे ले सबै कुछ कुछ हदसम सहज रही बढ़िया रही। ओके कार्यक्रम में सहभागी जना सुन्ने 91.5 61.255 के लाने एकदम खुला बा संगारी कौजा करती बाटी कसी के समय बीती बा हमारे संगे शेयर करे आई गप करे आई दोपहर के समय हो अल्सी समय अल्सी समय है कुछ हम रमाइलो कर कार्यक्रम में सहभागी जनाई आई फटाफट हम डायल करी सुन्ने 91.5 61.255 अर्थात 0915612585। आज कोई भी टैलेंट सुने न होगा कोई भी मतलब कार्यक्रम में कोई भी प्रतिभा सुने न हो जस्ता गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला सारी शेर चिरी चुरगन की आवाज जानवर की आवाज नेतन के नकल कैक्रो कार्यक्रम कोई भी प्रतिभा कोई भी टैलेंट अपने होकर सुना एक कार्यक्रम में सहभागी जने भी तो फटाफट चाहिए डायल करते कर भी सुनने 91.5 61.255 के लाइन हमारे खुला के लिए बाटी कार्यक्रम में सहभागी जने भी कल से अपने को हमारे रमाइलो गप हुई तो फटाफट चाहिए डायल करते कर भी सुनने 91.5 61.255 के लाइन एकदम खुला बा का नाम आप लोग जानकारी करती कार्यक्रम में फैंसी ठाव गीत जोड़ा गीत के पास मैंने बाटो डायल करते कर भी सुने 91.5 61.255 लाइन खुला।

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीतको पाछ फेरि स्वागत गर्थे। अब कहेँ व्यापारिक विश्रामको बेला हजुर भए कहेँ सट कमर्सा ब्रेक उड जाए ब्रेकके पाछ महिने बाटो रेडियो छोडके कहुँ पनि जेबी डायल गर्दै गर्बी 091-5-61-255 लाइन खुल्लै बा।
1: ओइ रजनी, वहाँ 62 नम्बर लट्ठी बा देखाउ त, कस्तो लेखाउ त?
2: मुर्गिन दाना देना जाला म काकर लट्ठी खा देती अब न।
1: एक तो तपा बाका मुर्गिन फारक है, लट्ठी से डिरेले से बख्ता की, आनो हारी छ त?
2: तापन घिस्काई चलाई नि होइत नि, नहीं तो अमन दस सागर बिहन घर भीतर आई लागी कल के भगैबी
1: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआदी और खादी कहीं का भगाई खोज लखो का
2: आरम कीड़ा फटिंगा मुँह साफ सिर निचा कर कहीं का फलाम को जारी लगा बात तब पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं थे की बिहन अपना न दाखी दूर रीना
1: हो बिना तो का करना हो सब देखती की जन लागल बिना रही देव तब तो अपना घूम का बारी वो कर लीता
2: हमारे के सापन से डरे ना नहीं बोली मुखरथे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलै लगी पति रक्षा करत लाग वा आपन बचाव करत लाग साम दसना कथा
3: सापन से दूर रही सापन रिस नी लगाई वा नी जिसके साप मने देख डरे था नी चलाख दूर रलसी साप नी दस्त तर मुखर खैना खाज बाहिर निस्कल जाना म घास काटा बेल ख्याल बेल ज्ञान बेल छू बेल से मने मही मारकलाग बाटा कना सबसक पति रक्षा कना क्रम म साप दसना कथ मने सापन व्यक्ति की मारकलाग रथ
4: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइत लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेधिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: बुका पिएरै त कबु पेन्सिलेरै त कबु झोलै फटाका आजी काकना हो बाबा फे होस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहेर
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुइति जरम भर भर बराइति रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो त कहाँ टीकापुर म रलक रटगे यहाँ झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कट्रास गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबू पेंसिल रहीन ना झोला फाटल हुई थी कैक आनल झोला जसका टस बाटिन ये बुढ़ो ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
4: आई हो बड्डो घर कहिया सीज जाइबो पाछ से शुरू करल मने घर सीज जा सकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नहीं करत का कहीं ना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बने लबाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफी ओस्ट बनी हो ना उत्र फिर पटा नहीं हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए ता था पाए
5: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोपराइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98484326
7: गरेको भए हैन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
8: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज न कुनै फाइनान्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
7: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
8: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
7: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
8: ई सेवा सबै सधैँ संगई।

हजुर मजा मजा गीत संगीत सुनायत सुनायत मजा मजा अपने सँगे बात बटवाइट बटवाइट कार्यक्रम निर्धारित समय डाकर काटे लागल अथवा रेडियो सुन के साथ देखिए सबको जन धन्यवाद देती टेक मेट के साथ देखिए भाई आकाश चौधरी है ढेर ढेर धन्यवाद देती जहां रवि स्वस्थ रवि व्यस्त रवि खुशी रवि और रेडियो टीका पुरे हम सुनते रवि का नाम जानकारी करती अंतिम रमाइलो गीत सब तीम मिशन आया छह राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन अब केवल शुभ रहे रेडियो टीका पुरे हम सुनते करती है।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाई वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
5: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूवी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
6: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
4: डेलिभरी का लागि
6: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
4: टीकापुर कैलाली
0: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870101672 स्वास्थ्यका लागि पानी

0: दाई नाच बा कहाँ जाए लग दो
1: पेशाब लगता चर्पी जाए टुका
0: ए रुको नाट कोशी नो कल से मई टर्च लाइट वो लट्ठी दिए तू लेख जाओ
1: का चीज सुनो लट्ठी वो टर्च लाइट
0: कहाँ कर रही दाई रात बेला बाहर निकल पड़ला से वा टॉयलेट जाए पड़ला से जहा फिर टर्च लाइट बार खो लम्बा लट्ठी देख के ना जाए पड़ता कहा कर की बर्खा छेक बा सांप रह से टर्च का अजराले सापन दिया खसेक दी था वो लट्ठी ठेक ठेक आओ सुनकर साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हम ना स्कूल मैडम सर नुकर साफ नुकर से ना ठाव सी न्याग पड़ला से वो काम कर पड़ला से दहिया फेठा फुसियार भी पथा गई खर सीखे लबाट का आम छेटवा दिवा झपा अथवा ध्यान घास चलक ठाव में न्याग पड़ला से लम्बा लट्ठी देख ठेक ठेक बजेटी न्याग पथा गई खर कलबाट
2: सात बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े ई मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना पिला कोस से सुखा ठाव का खोजी में ओकरा बाहर निस्कट
1: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग्घ आई सक विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकती था
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी ना पट्टा निपैना त
1: अजी गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशानाटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका अंशले कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: बैंकले कभैले कसै अवस्था मिलै तमरो एटीएम मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको गोप्य विवरण माग्दैन। यदि कसैले कसै माध्यम बठियाइलै तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या उहिले तुमलाई ठग्दु खोज्दछ। सँगै बैंकको कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणित हरु उनरो विवरण मागिभर बैंकमी सोधौं सतर्क रहौं ठगी बठिए बचौं।
1: सिद्धार्थ बैंक बठियाई जनहितमी जारी सन्देश।
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई।
3: कार्यक्रम गोचाली अब से प्रत्येक हफ्ता के शुक्रवार 10:15 बजे से करीब 11 बजे तक।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उग्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapureFM.org मोहलाप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। कंचनपुर में 71 जना प्रहार कैदी बंदी पकड़ाओ। राष्ट्रीय सभा बैठक प्रतिनिधि सभा में से संदेश सहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2083 सर्वसम्मत पारित। सभामुख कार्य संघ भारतीय राजदूत श्री स्वास्थ्य के विशिष्ट तार भेट। ओ देशभर मनसुनी बाई के प्रभाव आज फिर 6 प्रदेश में भारी वर्षा के संभावना। लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भाग में हावाहुरी चल रहा। कंचनपुर प्रहरी अदालत के फैसला कार्यान्वयन तीव्रता दिलावा। अदालत मचे कैद सजाय के संग जरिमाना तोकला फ्रहार लग धेरुसिन मुद्दा के फ्रहार अभियुक्त होकर पकड़ाओ करना प्रहरी जिला भर विशेष सक्रियता बढ़ेलवा। जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर के प्रवक्ता प्रहरी नायक परीक्षक टेक बहादुर रावत गत वैशाखी हाल समय 71 जना फ्रहार अभियुक्त पकड़ाओ कलक अदालत पेश कलक जानकारी दिल। जिला प्रहरी कार्यालय अनुसार यह गत वैशाख में 34 जना जेठ में 14 असार के हाल समय 23 जना फ्रहार अभियुक्त पकड़ाओ कल। प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा आयोग के अध्यक्ष वारिन्द्र शाह के अध्यक्षता में राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा आयोग के 2600 बैठक आज सम्पन्न हुई। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में बैठक चिकित्सा शिक्षा आयोग को संचालन गर्ने विधि 2083 स्वीकृत कलबाट। बैठक में आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष डाक्टर दीपेन्द्र खत्री कार्यविधि स्वीकृत करना संबंध में प्रस्ताव पेश कल रहे। बैठक में स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता और शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल सह अध्यक्षता गर्न रहे। प्रतिनिधि सभा में संदेश सहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2083 आज के राष्ट्रीय सभा के बैठक सर्वसम्मत पारित कलबाट। अर्थमंत्री डाक्टर सोनी मगले सभा में प्रस्तुत कलक आर्थिक विधेयक 2083 पारित करके प्रतिनिधि सभा में फिर्ता पठेना कैके धरलक प्रस्ताव दफा पर छलफल पाछ बिना सुझाव सभा सर्वसम्मत पारित कलबाट। बैठक में सांसद उठलक प्रश्न के जवाब दी। अर्थमंत्री वागले सरकार के विकास निर्माण में बाधक मनके ध्योर एनके व्यापार सुधार करना प्रक्रिया का बढ़ेलक बटिलोट सरकार पूंजीगत खर्च नहीना दशौ से लम्बा समस्या अंत्य करना चाहलक अर्थमंत्री वागले बटिलोट। बैठक के सांसद संधना देवकोटा रोशनी मेची मीना सिंह रखाल लगायत समतामूलक कर व्यवस्थापन कार्यान्वयन के पक्ष सरकार स्पष्ट पारा पर्ना सरकार विद्युत के ऊपर कर थुपना नहीं होलक शिक्षा में 3% फिता लागू पर्ना में जोड़ दिलबाट। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह निर्माण क्षेत्र के विद्यमान समस्या निर्माण व्यवसाय के प्रबंधन भौतिक पूर्वाधार विकास लगायत के विषय में आज निर्माण व्यवसाय के प्रतिनिधि संग छलफल करनाबाट। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के पदाधिकारी संघ हुलक छलफल में प्रधानमंत्री शाह निर्माण क्षेत्र मुलुक के आर्थिक विकास रोजगारी सृजना पूर्वाधार निर्माण के महत्वपूर्ण आधार हुलक उल्लेख करती है। क्षेत्र में देखलक व्यावहारिक समस्या के सामने के लग सरकार सकारात्मक रलक बोटिलोट। वहां निर्माण व्यवसायी हैं मर्यादित पारदर्शी जिम्मे और परिणाममुखी बनेटी विकास निर्माण के काम समय में सम्पन्न करना सकू पक्ष के सक्रिय प्रभावकारी सहकारी अपरिहार्य रलक बोटिलोट। वह छलफल में नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष निकुलस पाण्डे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त महासचिव शिवहरि घिमिरे बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासंघ के पूर्वाध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी रही। वहां की निर्माण क्षेत्र के भुक्ति अलग भुक्तानी में थप ठेक्का व्यवस्थापन समय में आयोजना कार्यान्वयन मूल्य समायोजन बैंकिंग तथा लगानी संबंधी चुनौती बारे प्रधानमंत्री शाह जानकारी करेलबाट। संघ निर्माण उद्योग चलायमान बनाईना सरकार और निजी क्षेत्र बीच के सहकार्य अभिन प्रभावकारी बनाईपना में धारणा वहां व्यक्त कलबाट। खोज खबर में घरी विश्राम विश्राम पास फिर से विश्व रवि सामुदायिक रेडियो टीका
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
2: हो र
1: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
2: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
2: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
2: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
0: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
0: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
0: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
0: ईसीजी सेवा,
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
0: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
3: फोन नम्बर 9844273359 र 9848423059। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
0: चार उमेश बजगाईकिपर कुटपिट कनार फिजियोथेरापिस्ट अनिल तिवार म्या थपलक केला जिल्ला अदालत धनगढ़ी पठिलवा घटना के थप अनुसन्धान करपना हुलक म्या थपकेला धनगढ़ी पठेलक इलाका प्रहरी कार्य टीकापुर जनलवा हुलक विषयमा छानबिन फेहुटी रहलवा अस्पताल के आन्तरिक व्यवस्थापन के विषयमा हुलक छपलमा विवाद बहरपा छ। प्रयोगशाला प्रमुख बजगाईके कुटपिट कर्ना अस्पताल के फिजियोथेरापिस्ट अनिल तिवारी प्रहरी नियन्त्रण मरेलक बोटिलोबाट अस्पतालमा फे घटना के छानबिन केला सुरेश त्रिमाल के सहयोगमा छानबिन समिति गठन कलबाट। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निर्माण क्षेत्र के विद्यमान समस्या निर्माण व्यवसाय के प्रबन्धन भौतिक पूर्वाधार विकास लगायत आज निर्माण व्यवसायकी प्रतिनिधिहरूसँग छलफल कलबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकी पदाधिकारीसँग हुलक छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहकी निर्माण क्षेत्र मुलुकी आर्थिक विकास रोजगारी सिर्जना पूर्वाधार निर्माणकै महत्वपूर्ण आधार हुलक उल्लेख गर्दै हे क्षेत्रमा देखा परल व्यावहारिक समस्या समाधानकै लागि सरकार सकारात्मक रगलक बुटिलोबाट उहाँकै निर्माण व्यवसाय मर्यादित पारदर्शी जिम्मेवार परिणाममुखी बनेटी विकास निर्माणकै काम सहीमा सम्पन्न गर्न सकु पछिकै सक्रिय प्रभावकारी सहकार्य पिराहारे रलक बोटिलोबाट ओहो छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकी अध्यक्ष निकोलस पाण्डे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त महासचिव शिवहरि घिमिरे बागमती प्रदेशकी उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासंघकी पूर्वाध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी रहे। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाकै सभामुख डोरप्रसाद अर्यालसँग नेपालकै लागि भारतकै राजदूत नवीन श्रीवास्तवकै शिष्टाचार भेट गर्नबाट सिंहदरबारमा आज हुलक उक्त भेटघाट सभामुख अर्याल सरकारमा आफ्नो पहिलो 100 दिन पूरा हुल बटेटी हाल सम्पन्न निर्वाचनकै क्रम भारत सरकार उपलब्ध गरेक सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्ल। उहाँ नेपाल भारतबीचकै सम्बन्ध साझा सभ्यता भौगोलिक निकटता सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्धमा आधारित रलक उल्लेख गर्दै व्यापार सुरक्षा नागरिक उड्डयन जलस्रोत तथा कनेक्टिभिटी लगायत क्षेत्रमा रलक ध्यौरसिन्धी पक्षीय षड्यन्त्र मार्फत सम्बन्ध अभिसुदृढित हुइटिगलक स्मरण गरेलबाट उच्च स्तरीय भ्रमणकै आदान प्रदान दुई देशबीचकै सम्बन्ध थप बलियो बनैना सभामुख आर्यालकै कहिर उहाँ नागरिक उड्डयन रेल तथा बस सेवा मार्फत कनेक्टिभिटी विस्तारकै दुई देशकै बीच सम्बन्ध थप मजबूत बन्ने उल्लेख गर्दै भविष्यमा थप उडान रेल तथा बस रूट विस्तार हुन अपेक्षा कलबाट सभामुख कार्यालय भारतकै लोकसभाकै सभामुख ओम बिराल नेपाल भ्रमणकै निमन्त्रणा देलक जानकारी दिति दुनू पक्षकै लागि अभियुक्त समयमा उहाँ नेपालमा स्वागत गर्न तर्पर रहल बोटिलोबाट भेटमा राजदूत श्रीवास्तवकै भारतकै लोकसभाकै सभामुख बिराला के नेपाल भ्रमणकै लागि इच्छुक रहलक जानकारी गरेटी नेपालकै सभामुख तथा सांसद हुकन भारतकै संसदीय अभ्यास अध्ययन तथा अवलोकनकै लागि भारतकै भ्रमणकै नियन्त्रणमा दिल रहे। उहाँ संसदीय कूटनीतिको उच्च स्तरीय राजनीतिक सांसद नेपाल भारत सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न विश्वास व्यक्त गर्दै व्यापार कनेक्टिभिटी ऊर्जा शिक्षा तथा जन जनबीच के सबभन्दा विस्तारमा भारत सरकार निरन्तर सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहल बोटिलोबाट खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्रामपा छ फेरि विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
4: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा
5: यही असार 27 गते शनिबारका दिन
4: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
5: डाक्टर आउने दिन असार 27 गते शनिबार
4: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772
6: आइ हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल
7: अरे का करूरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का
6: मिस्तरान बर्जना हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुहाका द्वार लगाक टुफे ओस्त बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुइन कि गोङ्गुवा बुढो हो न कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए
8: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः विलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा की उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
9: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
10: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008
0: हाल देशभर मनसुनी बाकी प्रभाव पर्लक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनेलमा मनसुनकै न्यूनचापी रेखा नेपालकै पूर्वीय पश्चिम भूभागतर्फ नै सदर ठाउँमा आसपासमा अवस्थित अकर प्रभाव हाल देशभर साधनतया बद्री लग्नमा बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशकै कुछ ठाउँमा तथा बाँकी प्रदेशकै कम ठाउँमा मध्यम वर्षाकै सम्भावना हुटिरहल आज दिनकै फेरि देशकै साधनतया बद्री लग्नक देशकै पहाड़ी हिमाली भागकै कुछ ठाउँमा चट्याङ सहित मध्यमसम्म वर्षाकै सम्भावना वा बागमती गण्डकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेशकै तराई भूभागको स्थान तथा मध्य प्रदेशकै संघ कोशी प्रदेशकै तराई भूभागकै कम ठाउँमा चट्याङ सहित मध्यमसम्मकै वर्षाकै सम्भावना वा बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहाड़ी भूभागकै एक दुई ठाउँमा भारी वर्षाकै फेरि सम्भावना रहल वा लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेशकै तराई भूभागकै कुछ ठाउँमा हावाहुरीकै सम्भावना वा आज रातकै देशभर अधिकांश बद्री लग्न वा कोशी बागमती गण्डकी प्रदेशकै हिमाली भूभागकै कुछ ठाउँ तथा लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशकै हिमाली भूभागकै कम ठाउँमा चट्याङ सहित मध्यमसम्म वर्षाकै सम्भावना वा मध्य प्रदेश संघ कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहाड़ी हो तराई भाके कुछ ठमा कर्णाली प्रदेश पहाड़ी भाके कम ठमा चट्याङ सहित मध्यम समके वर्षा के संभावना बा कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी हो तराई भाके एक दुई ठमा भारी वर्षा के फिर संभावना रह बा कोशी हो गण्डकी प्रदेश के पहाड़ी भाके एक दुई ठमा ध्यौर भारी वर्षा के फिर संभावना रह बा यह समाचार संघ खोज खबर बढ़ल जिना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक चो कंचपुर में 71 जना प्रहार कैदी बंदी पकड़ाओ राष्ट्रीय सभा बैठक प्रतिनिधि सभा में संदेश सहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2083 सर्वसम्मत पारित सभामुख कार्य संघ भारतीय राजदूत श्रीवास्तव के शिष्टाचार भेट ओदेश्वर मौसमी वायु के प्रभाव आज 6 प्रदेश में भारी वर्षा के संभावना पश्चिम प्रदेश के तराई भाग में हावाहुरी चलना गीता बकला खोज खबर तरह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद द्वितिया बकला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदा हिटू या पास 6 बजे के खोज खबर सुन्न सिक्वी सामुदायिक रेडियो टीका पूरा एफएम सुनती रवि राम राम
11: नाता छावा सांपन कुछ नहीं कराई सम सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपन ही चल गया कुछ कराई था वो सब कुछ सांप दिखा फिर नहीं रहता
12: दिखा हो कि नहीं हो का कसी का चिन्ह ना दंदाई
13: लिया नेपाल में पाँच दिन आप दिखा सांपन का विषय मसूर एक थोड़ा ठह गरे जा जो उन खास कह कर रातिक समय में घर भीतर बैठा सेक था ये कटला से निबटाई फिर सेक कर तरह कटला पास है दे भाग जो निचलना कह कर सास फेर जो निशेक ना में से लक्का हुई सेक था और रठह डोम जो उन बड़ा रिसाहा मेरी कर था इनकर फाट फूले था डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह कर संजय ध्यान देख पड़ता निकर कटला से फिर लक्वा हुई सेक था वो और रठह कैदी जाटक सांप निकर कटला कला से कटला भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत फिर पाची होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमार देशक तराई सबको भूभाग में पा देना बगोक ने न फुनकारना बाधे सांप ई सांप 10 लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा
14: उपचार केन्द्र
15: उपचार केन्द्र पत्ता लगाए आधिकारिक नेपाल
16: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जै बो पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जा सेकल
1: अरे का करुरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्टा फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कमर घूम जाए था पाए
2: यूपी भीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
3: ए बा आई गई क्या आज त पहिला नौकरी को पहिला महीना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली
4: तनखा खाइकन होइन बुवा तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु हो भन्या बुवा पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी

0: मिर्जापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
1: गरेको भए होइन, गरिहाल्नुस्। यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
2: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भर पर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनेन्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
1: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
2: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
1: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
2: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
3: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
4: कोट पीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नाई देना, बोले नाई देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई।
3: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। ओसीएमसी, स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
4: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे, जय से जय।
3: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
5: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज।

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दी घोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा तुहार रामपुरान दिदी ये नै सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बनाकर आंसेकले कतरा सुगर बनाकर ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सक्कू भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित तो सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कू जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय महेन्द्र नगर कंचनपुर से जनहित में जारी संदेश।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो।
1: जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या।
0: यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
2: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
2: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
3: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
4: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्रेक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
2: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 4857 1828।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
5: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नै निकर छु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तवई तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तू मैं अब भी जाय।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
7: मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
6: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

विजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: बुका पिएरै त कबु पेन्सिल रै त कबु झलै फटाका आजिठ का कना हो बाबा फि ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झला आनला से त लड़का सामान निहेरे
1: ओहो इ बुढा लिखबे का हुइतिस जलम भर भर बरैति रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झला लाना नि छिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो ओ त कहाँ टीकापुर म रलक रगे या झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबू पेंसिल रहीन ना झोला फाटल हुईन कैक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में
2: रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: चुरे जोगाऊ पानी का मुहान बचाऊ वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौं हरियाली बढ़ाऊ चुरेको संरक्षण हाम्रो दायित्व हो समृद्ध र सुरक्षित भविष्यको आधार हो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लंकी कैलालीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
1: कार्यक्रम गोचाली अब से प्रत्येक हफ्ता के शुक्रवार 10:15 बजे से करीब 11 बजे समय

0: बिजापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: युर्चसिन सापनका दसाई खतरनाक नि रह समय मजो उपचार कराई सेक लसे दिखा सपनका कातल मनयाना फे बचाई सेक जिठा सपवा कटलक मनयाना झट्टा से झट्टा उपचार केन्द्रमा पुगाई सेक लसे वही हना भारी क्षति हुना से जोगाई सेक जिठा
2: विश्वास लग्नाओ सही जानकारी पाइक लाग लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहे छ जिठा।
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।